हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.

माजरन जी 12 सीटन के 12 माण्हू हिक बंद कमरे में वेही खत्म नथा करे सघनि। ज्वाइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर जो अम तबाह करण चाहे थी। वफाकी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में आज़ाद चूंडन जे नतीजे खे शकी बणाइण जी कोशिश कई पई वञे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जा केतिरा ई जायज़ मुतालबा तस्लीम कया। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपया फी यूनिट डि॒नी पई वञे। अटे समेत ॿियनि ज़रूरी शयुनि ते सब्सिडी बि ॾेई रहिया आहियूं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ॿीहर एहतजाज जो सॾु ॾेई सूरत हाल बिगाड़ण जी कोशिश कई आहे।

अली ऐं मीरा शाह में खारिजी दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कयूं। मारिजी वियल खारिजी दहशतगर्दनि वटां वॾी तादाद में हथियार ऐं बारूदी मवाद बि मिलियो आहे। मारिजी वियल खारिजी दहशतगर्द केतिरनि ई दहशतगर्द कार्रवाइयुनि में मुलविस हुआ। सेंटर जे लाड़काण में कैद सलाहकार इस्माइल डायरी जी तबियत खराब गणती जोगी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस्माइल डायरी खे साह जी तकलीफ़ सबब ट्रामा सेंटर लाड़काण जे आईसीयू में दाख़िल कयो वियो।

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पब्लिक हेल्थ खाते जे कचनि मुलाज़मनि मुतालबनि जी मदद लाइ एहतजाज कयो। खैरपुर, शहदादकोट, कंदकोट, टनो मोहम्मद ख़ान, नौशहरो फेरोज़ ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा। मुलाज़मनि जो चवण आहे त 7 सालनि खां इदारे में कम करे रहिया आहियूं, अञा ताईं पको नथो कयो वञे। सरकार तरफ़ां ऐलानियल पघारूं बि नथियूं मिलनि, पको करे सरकार तरफ़ां ऐलानियल पघारूं जारी कयूं वञनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

साईं मुंहिंजा हिकड़ी ॻाल्हि अफ़सोस सां करणु ज़रूरी लॻे थी त पंहिंजे इलाइक़े पंहिंजे सिंध ऐं रवाज में अहिड़ा रवाज शुरू थी चुका आहिनि जेके ॿियनि मुल्कनि में पहिरियां हूंदा हुआ ऐं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं पंहिंजे मुल्क में पंहिंजे इलाइक़े में पंहिंजी सिंध में ऐं जेकॾहिं उहा ॻाल्हि थी वञे त ॾाढी पंहिंजो अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे। त साईं मुंहिंजा ॿाहिरियनि मुल्कनि में जेके वॾी उमिरि वारा माण्हू आहिनि यानी खोड़ा माण्हू आहिनि उन्हनि जे रहाइश लाइ हिकड़ा अलॻि पंहिंजो क़ैद खाना चऊं या असांखे ओल्ड पंहिंजो जेको आहे सो कुराड़नि माण्हुनि जा रहाइश गाह जंहिंखे असां चऊं उहे बिल्कुलु हूंदा आहिनि। पर जिते पोढ़ा माण्हू पंहिंजनि बचनि सां पोपटनि पोपटियुनि ॾोहिटनि ॾोहिटियुनि न ऐं पंहिंजो धीअरनि सां ऐं पुटनि सां हुन जी ज़िंदगी गुज़री हूंदी ऐं उते जो उहो माण्हू उन्हनि लाइ न हुजनि जिन जी सार संभाल पछाड़ीअ में पंहिंजे वॾनि जी कबी आहे ऐं उनजी साल संभाल रहिबी आहे ऐं साईं मुंहिंजा जिते ओल्ड होम आहिनि उते उनजी साल संभाल लाइ मेल फीमेल नर्सियूं हुकूमत तरफ़ां मुक़रर थियल हूंदियूं आहिनि ऐं हिन उमिरि में त हुनखे नंढे ॿार वांगुरु प्यार ऐं मोहबत जी ज़रूरत हूंदी आहे। अहिड़नि सेंटरनि ते ॿाहिरनि मुल्कनि में ओल्ड मैन हाउसिस सॼो वेंदो आहे।

पर हाणे इहो सभु कुझु असां पंहिंजनि इलाइक़नि में ॾिसूं पिया ऐं असांजी सुहिणी सिंध बहराड़ी में जेके असांजा वालदेन आहिनि, जेके असांजा पोड़ा आहिनि, असांजे जेके घर जा अंगण आहिनि चवनि था त उहे सोढ़ा थी विया आहिनि ऐं उहे खुलियल अंगण वॾा वॾा घर बे सोढ़ा आहिनि, जॻह न आहे उन्हनि वालदेन लाइ, उन्हनि अमिड़नि लाइ जंहिं असांखे असां औलाद खे ताते पाले वॾो कयो। अॼु उहा ई औलाद पंहिंजे पोड़नि वालदेन खे दरगाहनि ते छॾे पिया अचनि ऐं असांखे छा थी वियो आहे जो असां अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते अची पहुता आहियूं। असांजे मुआशिरे खे पुटनि जूं मारूं लाहवारस हुजनि ऐं दरगाहनि ते असांजा ओल्ड मैन हाउसेस जे बराबरि थी विया आहिनि ऐं उते असां पंहिंजे वॾड़नि खे, पंहिंजे कुराड़ियुनि अमड़नि खे, पंहिंजे बीमार वालदेन खे असां दरगाहनि ते छॾे पिया अचूं त ॻाल्हि साॻी थी वई त ओल्ड जेके आहिनि असांजा घर आहिनि जेके उते पंहिंजो वालदेन खे माण्हू छॾींदा आहिनि, उन्हनि खे रहाइश पज़ीर हूंदा आहिनि, पर असां वरी हिते पंहिंजे वॾड़नि खे दरगाहनि ते छॾे पिया अचूं, जेका सरासर ॻाल्हि ग़लति आहे। जिन असांखे पाले ताते वॾो कयो ऐं असांखे पंहिंजे हंज में सुम्हारियो, अॼु हुन खे ज़रूरत आहे पंहिंजे दवाउनि जी, पंहिंजे केयर जी, पर असां हुन जी केयर कोन था कयूं। चवंदा आहिनि त जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी, इहा ॻाल्हि सरासर ग़लति आहे। इन शयुनि खां पासो कयो, पंहिंजे अबे मण सां प्यारु कयो।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: साथिये में।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
3: GFM 91.6।
4: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
5: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer.
6: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।
9: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
8: सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी ऐं सारी आहे. तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक जारे वॻे ते कॾहिं मन वञो. हिन वक़्तु हलूं पिया न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं.

कार्रवाई कंदे इसराइल के उतरी इलाकन के बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन से निशानो बनाया पाजरान इनकलाब चाहे इसराइल लबनान में हिजबुल्लाह खिलाफ कार्रवाई न रोको तो नतीजा तबाह कर हूंदा इसराइल जब ईरान ते हमला तेहरान तब्रिस्तान गिर्स में धमाकन का आवाज बुधा वह इसराइल दावा कई है ओला सेंट्रल एयर ईरान में फौज हंधन के निशानो बनाया वो है कार्रवाई ईरानी हमले के जवाब में कई वही ईरान के मिसाइल हमलों से कंके नुकसान ना पौतो ईरान के मशवरो डी तमाम पंजा मिसाइल लॉन्च कया बस एतरो काफी है हाँ गाल मिसाइल अबेस से अचो ए मुहिदो असान डील के वेझो आयो नो चाह तो सफारतकारी वाली मेहनत जया थी वे अमरीकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में बिरो ते इसराइल के हमले और ईरान के जवाबी हमलों बाबत ब्रीफिंग सदर ट्रंप चाहे ईरान हमला बंद कर नेतन्याहू के चवंदस ईरान खिलाफ जवाबी न करे मुआहदे का अग न पाबंद खत्म नई जब्त थियल असासा बहाल थन्दा इसराइली मीडिया मूजिब अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वजीर अजम के फोन कर ईरान हिजबुल्लाह खिलाफ अधिक कार्रवाई का रोके छो गिलगित बल्तिस्तान चूंडन में पीपीए मैदान मारे वरतो जियालन जो जश्न चौवीह सीटन मारह सीटन जा मुकम्मल नतीजा अची वह गैर सरकारी गैर हतमी नतीजन मूजिब पीपल्स पार्टी नवन सीटन से कामयाब बिन सीटन से नवाज लीग एक वाहिद अल मुसलमीन ए छह सीटन से आजाद उम्मीदवार कामयाब अजीबे टे गिलगित आजाद उम्मीदवार सैद सोहेल अब्बास खटे वो पीपल्स पार्टी जो आफ्ताब हैदर बे नंबर से रहो जीबीए चार नंगर से पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो मोहम्मद अयूब वजीरी वे नंबर से रहो जीबीए पंज ते नगर से पीपल्स पार्टी जो जुल्फकार अली मुराद कामयाब मजलिस इबादत अल मुस्लिमीन जो रियाज अकबर हाराए वो जीबीए सत असरदू ते पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार सैद तौकीर मेहदी खटे पाकिस्तान पार्टी जो राजा जलाल हुसैन खान बे नंबर से रहो जीबीए असकरदू नव ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद कामयाब आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम हाराए वो गांधी के तक बावी ते नवाज लीग जो उम्मीदवार इब्राहिम सनाई ए जीबीए चौवीह गांधी तम आजाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक खटे वो बेन तक नतीजा अचान सिलसिलो जारी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के चौवीह सीटन से चार सौ उम्मीदवार हिस्सों वरतो पीपल्स पार्टी टेवी नवाज लीग बावी सगाम पार्टी या पंद्रह उम्मीदवार के मैदान में लाथो वो 260 आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ तकन इलेक्शन में हिस्सों वरतो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GAFM 91.6।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GAFM 91.6।
3: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
4: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

जी हा साईं, मुंहिंजा वापसि चुका आहियूं प्रोग्राम रोशन सुबुह में, ऐं प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। साईं, मुंहिंजा यादगिरी याने यादूं ज़िंदगीअ जो ख़ूबसूरत ऐं अज़ीम सरमायो आहे। यादूं जॾहिं तनहाईअ जे मौसम में ईंदियूं आहिनि त गुज़िरियल ॻाल्हियुनि खे सोचे करे चपनि ते मुर्क पखिड़िजी वेंदी आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त गुज़िरियल ॾींहं जो पल पल सोचे करे दिलि रोई बि पवंदी आहे, ऐं यादूं मायूसीअ में उमेद जो ॿरंदड़ ॾींहुं हूंदियूं आहिनि। ऐं यादूं ताज़नि गुलनि जे मिसाल आहिनि, ऐं यादि जो ॾींहुं जॾहिं कंहिंजी यादि में ॿरंदो आहे त दिलि जो बोझ अखियुनि जे ज़रिए निकिरी ईंदो आहे।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में हाणे अवां दोस्तनि जा नाला खणंदासीं पर अवां खे इहो ॿुधाईंदुसि त जेको मां हिन वक़्तु कलाम हलाईंदुसि उहो असांजो जेका असांजी स्टेशन आहे मीरपुर ख़ासि त मीरपुर ख़ासि वारनि जे लाइ मुंहिंजो ही जेको कलाम हूंदो ऐं जेका अक्सरियत आहे नालनि जी हिन वक़्तु उहा मीरपुर ख़ासि वारनि जी आहे जेको ही मुंहिंजो कलाम हूंदो हलाईंदासीं उहो मीरपुर ख़ासि वारनि जे नाले हूंदो ऐं समय कुझु दोस्त जो नालो सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां फतेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो ऐं बेबी शुगफ्ता नास कनासरो ऐं कुर्बान अली ख़ासकेली इनायत अली ख़ासकेली लॻे झंडो मरी खां ऐं असद अली रिंद मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मोहम्मद इदरीस जरवार बि मीरपुर ख़ासि खां ऐं राझन कोरी कोरी ॻोठ मीरपुर ख़ासि खां ऐं नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी महबूब नाज़ जलालाणी असलम मुख़्तियार जलालाणी ॻोठ ग़ुलाम हुसैन जलालाणी खां ऐं मरी ॻोठ पंहिंजो ॻोठ बिलावल मरी खां पोड़ो खान मरी लॻे झंडो मरी खां ऐं असमा लिगारी मीरपुर ख़ासि खां ऐं मीरपुर ख़ासि खां इक़बाल लाचारी ख़ालिक लाचारी मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ जरवार पोड़ो अब्दुल अज़ीज़ सोलंगी पोड़ो सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां चनेसर बेहण आज़ाद बेहण मोरे खां आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां नवीद चन्ना घोटकी खां ऐं यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां त समन ही पंहिंजो कलाम गुलाब जो गुल ॿुधूं था इहो मीरपुर ख़ासि वारनि जे नाव आहे।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी उसारी आहे। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीक 11 वॻे ताईं। तव्हांजा नाला ऐं तव्हांजे पसंदि जा ई कलम हूंदा। ऐं हिन दलो पिया नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि न वञिजो।

साईं जा ॻाल्हि निकिती आहे वक़्त जी त ॻाल्हि कंदासीं असां बि वक़्त जी त वक़्तु हिकु अहिड़ी ताराज़ी आहे जंहिं जी हिकु हिसे में ज़िंदगी ॿिए हिसे में मौत आहे। वक़्त खे धिका ॾियण वारा हमेशा माण्हू ॿियनि जे धिकनि जा निशाना बणबा आहिनि ऐं वक़्तु अहिड़ी घड़ी आहे जंहिं में हर इंसान जी तक़दीर जो फ़ैसिलो थींदो आहे। मुक़दर हमेशा उन्हनि माण्हुनि जे हथ में हूंदो आहे जेकी हमेशा वक़्त खे पंहिंजे हथनि में रखंदा आहिनि। वक़्तु इंसान खे सुधारे बि सघे थो त ख़राब बि करे सघे थो ऐं वक़्त जो हर लम्हो सोन जे ज़रे वांगुरु क़ीमती ऐं कराइतो आहे। उन करे वक़्त जो क़दुरु कयो ऐं कामयाब इंसान उहो थींदो आहे जेको वक़्त जो क़दुरु कंदो आहे। गुज़िरियल वक़्तु वापसि कॾहिं बि न ईंदो।

हा जी असां में न वाकई वक़्त बि हाणे थोरो बचियो आहे ऐं कुझु अवां दोस्तनि जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। नज़ीर खोसो सोबत बुर बलोचिस्तान खां भाउ जो मैसेज आहे ऐं बरकत अली जमाली बलोच अली हसन जमाली बलोच गोठ हाजी गुलानबी बलोच जमाली बलोच बलोचिस्तान खां मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमालद्दीन कुंभार अबू बकर कुंभार हाले पुटा स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं लटको मोरी सांगड़ खां ममन सालिह लगारी लाल बख्श लगारी ऐं बिलावल लगारी ऐं हुन नंढो ओसामा लगारी हुन सां गॾु आहे ऐं मोहम्मद मीरण जखरणी जेकबाद खां भाउ जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब ऐं बखर खां रेहाना खान दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं साईं जा ॻोठ मोल ॾिणे माशी लॻे वॾनि माण्हुनि खां ज़मीर हुसैन सोलंकी मुख़्तार अली ज़हीर अब्बास ऐं वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अहसन फहद अहद ऐं शादाब चांडियो ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जुणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो ऐं यारमन करोड़ कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली महेसर ऐं असांजो इमदाद अली दायो मोहम्मद सैफुल्ला दायो जवाद अली यासिर दायो लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां ऐं भाग्यो खान शर ॻोठ आज़मदीन शर खां राशिद अवाण असांजो प्रोग्राम ॿुधे वियो भाउ मेरापुर खां हाजी सोरा मंगरियो ॻोठ सचिनो मंगरियो खां ऐं हुन सां गॾु आहिनि गुलाब खान मंगरियो ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं अलाह बचायो नुहाणी भाउ प्रोग्राम।

जी समय जलाल चांडी जी खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे तो पांजी पुजाणी ते इजाज़त मेज़बान नेमत अल्लाह जुणे जो के अल्लाह निगाहबान।

बात कया विया हैं। इसराइली फौज वायत ईरान जी माशर में पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स में केतन हदफन के निशानो बनाए वो है। ईरान के मिजाइल हमलन से कंखे को नुकसान ना पौतो। ईरान के मशवरो डीस तैंजा मिजाइल लॉन्च कया, बस एतो काफी है। हाँ गाल मेज से अचो मुहिदो किया, अस डील के वेझो आयो, नो चाहें तो सफारतकारी वाली मेहनत जया थी वे। अमरीकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में विरोध इसराइल के हमले और ईरान जवाबी हमलन बाबत ब्रीफिंग। सदर ट्रंप चो ईरान हमला बंद कर, नेतन्याहू के चवंदस ईरान खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करे। मुहिदे का अगे न पाबंदी खत्म थन्दी, नई जब्त थे साजा बहाल। इसराइली मीडिया मूजिब ट्रंप नेतन्याहू के ईरान हिजबुल्ला खिलाफ कार्रवाई का रोके छो है। गिलगित बल्तिस्तान चूंडन में पीपीए मैदान मारे वरतो। जियारन जो जश्न, चौवी सीटों में 18 सीटों का नतीजा अची वह। गैर सरकारी ए गैर हतमी नतीजन मूजिब पीपल्स पार्टी 9 सीटों से कामयाब, 2 सीटों से नवाज लीग, 1 से वहादत अल मुसलमीन, 6 सीटों से आजाद उम्मीदवार कामयाब। जीबीए 3 गिलगित से आजाद उम्मीदवार सैयद सोहेल अब्बास खटे वो। पीपल्स पार्टी की आफ्ताब हैदर बे नंबर से रहो। नगर से पाकिस्तान जो मोहम्मद अयूब वजरी बे नंबर से रहो। जीबीए 5 नगर से पीपल्स पार्टी जो जुल्फकार अली मुराद कामयाब। मदल से वहादत अल मुस्लिमीन जो रियाड़ो। जीबीए 7 से अस्करदू थे पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी खटे वो। इसकाम पाकिस्तान पार्टी जो राजा जलाल हुसैन खान बे नंबर से रहो। जीबीए अस्करदू 9 से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद कामयाब। आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम हाराए वो। गांची के तक 22 से नवाज लीग जो उम्मीदवार इब्राहिम सनाई ए जीबीए 24 गांची में आजाद उम्मीदवार अख्तर असद शफीक खटे वो। बेन तकन का नतीजा अचान जो सिलसिलो जारी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 सीटों से 400 का उम्मीदवार हिस्सों वरतो। पीपल्स पार्टी 23 नवाज लीग 22 तकाम पार्टी 15 उम्मीदवार के मैदान में लातो ए 266 आजाद उम्मीदवार में मुख्तलिफ तकन से इलेक्शन में हिस्सों वरतो। आई सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में कुछ ही कलाकन दौरान 3 नौजवान कतल, ब जख्मी। कंबर पीछो गोट ताज मोहम्मद की बाण में बिरोही बिरादरी के बिंदड़ में घरेलू तकरार था छेड़ो। फायरिंग में 40 साल किफायतुल्ला बिरोही कतल। सनस सोर खलील जख्मी। नौदेरो वेझो गोट गुलन जेहो में हथियार बंद नौजवान सिंगार जेहो के कतल कर छो। प्याज जख्मी इलाके में चोबो लाइन तबाको कारे तकरार था पेश आयो है। जैक बाद के इलाके हक बाहू पाड़े में संगापी तकरार दुकान से वेठल 30 वरन जो नौजवान सदाम सोलंकी कतल सांस भाव जो चवण है। साबर लाशारी नईम जखरानी ए एक अंडतल जवाबदार फायरिंग करे सदाम सोलंकी के कतल किया। जवाबदार गुजरियल डी कतल जो धमकियों डिन्नी हुई। पुलिस के शिकायत कई पर कदम न खाया व्यवहार।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6। सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

लगाते हैं। प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुन। सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: 0300-11-34-88 भाई का गाना हम सर्च कर रहे हैं, साथ साथ कॉलर्स भी ले लेंगे. 0300-11-34 डबल एट इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, तो कॉल कीजिए. नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हाल चाल?

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, DFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मोरो के हो तो आवाज भी मोरो की है, सुनते

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: अच्छा आज का तंग टिस्टर ये है कि दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली ठीक है ये कहना है दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली और ये कह के दिखाएंगे और ये कहने के बाद ना जो बंदा सही सही अच्छा अच्छा कहेगा वो विन कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉलर हेलो वालेकुम अस्सलाम सरदार कैसे हो
1: बिल्कुल ठीक हूँ आप बताइए
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ जल्दी से गाना सुना दो
1: जल्दी

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 12 PM. This transaction is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी रफ्तार भी बैंक Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज. आप सुन रहे थे GFM नेट.
5: कयो तेहरान के चवंदो त अवां मिसाइल फायर करे छजा हाणे बस कयो गाडियुनि जी मेज ते वापस अचो ईरान सां मुआहिदो न थियो त कमांडो ऑपरेशन ते गौर कयो वेंदो मीडिया रिपोर्ट मूजिब ट्रंप नेतन याओ के इसराइल ते वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे. अमरीका ईरान में इम्कानी मुआहिदे ते अॼु या सुभाणे सयूं थियण जो इम्कान आहे. नेतन याओ ट्रंप खे ईरान ते हमला न कराइण जी ख़ातिरी बि कराई आहे.

ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जा इसराइल से झड़पन बाद मुख्तलिफ मुल्कन के हम मनसूबत सा राबता अब्बास इराकची फील्ड मार्शल सदास मुनीर से भी गाल बोल कई ईरानी परदेही वजीर सऊदी कतर ए फ्रांस के भी हम मनसूबन के फोन किया इसराइल से पैदा थियल मौजूदा सूरत हाल से गालू क्यों।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हेलो की जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, और आकर मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है। आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू 03000113488 के ऊपर आप लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाएगा, सो दैट आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात कर पाएंगे। हमारा बैकग्राउंड क्यों खत्म हो गया यार? हमारा बैकग्राउंड नहीं खत्म होना चाहिए था। सो साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स भी मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, सबको इंक्लूड करेंगे और बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस जो कि आप लोग मुझे करते जा रहे हैं, तो सुनेंगे एक अदद बैकग्राउंड और इसी के साथ हम कमेंट्स को रीड करेंगे।

ओके जी, गवर्नमेंट्स को एंटरटेन करते हैं इस मांग के शो के लिए. गुड मॉर्निंग सर, मैं आ गया. गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. इसके अलावा जी, इस मांग के शो के लिए गवर्नमेंट घूम करने पड़ेंगे. घर तो रही हूँ री. अब्दुल रजाक कहते हैं मोहम्मद खान कुंबर हालीपोटो स्टॉप से सुन रहे हैं. क्या सरदर्द ने यही गाना गाया था? क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आया है ना, मुझे भी नहीं आया. मैं समझ रही थी कि शायद मुझे ही नहीं आ रहा है. आप लोग कहते होंगे कि पता नहीं कैसी आ रही है, समझ ही नहीं आता इसको कुछ, लेकिन वाकई समझ नहीं आ रहा था यार वो तो. द सॉन्ग वॉज प्लेइंग फॉर 7 मिनट्स. इट विल इट एंड सम टाइम. हो गया ना खत्म, हो गया ना. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड शो, वेलकम टू द शो. आपको भी वेलकम. आज का टंग ट्विस्टर, दानिया ने धीरे धीरे देखी, नहीं सॉरी, दानिया ने धीरे धीरे दाल देखी में डाली. दानिया ने धीरे धीरे दाल देखी में डाली, ये कहेंगे 03000 111 3488. और मिसेज अली कहते हैं कि कॉल पे नम नहीं, अच्छा नंबर नहीं लग रहा. अच्छा, मुझे जब मैसेज रिसीव होता है ना, मैं उसको उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन के साथ रीड कर रही होती हूँ. जैसे बहुत सारे लोग नंबर को नम लिखते हैं, नम नहीं लग रहा. नहीं को नहीं लिखते हैं, नहीं, नम नहीं लग रहा. ओके, 03000 111 3488 ये हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है. इसके ऊपर कॉल करने के बाद आप लोग

0: आ सकते हैं कॉल पे और टंग ट्विस्टर कह सकते हैं. तो फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल इस सेगमेंट के, हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदर्द. सरदर्द बात कर रही हो?
1: बात करें.
0: कौन बात कर रही हो? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो,
1: बता रही हूँ.
0: बता रही है तो बताए ना.
1: सरदर्द बात कर रही हूँ.
0: सरदर्द बात कर रही हूँ. सरदर्द टंग ट्विस्टर बोलना है?
1: डालने डाल दी.
0: यस, वेरी नाइस. और कुछ कहना है सरदर्द?
1: हाँ, यार इस दिन आप जब कॉल पहले आप रिसीव करे थे, फिर बाद में आपने दी थी, तो ये कॉल थी, इसीलिए मैंने कॉमेंट आपसे कही थी, तो मैंने सुन ली इस मासी से बाइक.
0: अच्छा, तो फिर क्या कहना चाहेंगी, जवाब देना चाहेंगी?
1: हाँ, वैसे तो मेरी कहने से तेज नहीं है वैसे. वो कॉमेंट आप रीड करे थी, तुम्हें कॉल पे थी, इसीलिए मैंने सोचा
0: चले ठीक है
1: यार, इस मासी से बाइक सॉरी, आपको बुरा लगा गए.
0: नहीं, बुरा तो उन्हें क्यों लगेगा, वो असल में ये कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया.
1: नहीं, उस दिन में जब उसने माफी के बाइक थी ना, फिर ख्याल चले थे, वही बताए.
0: चलो जी, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू. और कुछ?
1: अल्लाह हाफिज़.
0: अल्लाह हाफिज़.

0: Okay, next caller. Hello.
1: Assalamualaikum, gentlemen.
0: Waalaikum assalam. Lag gayi na call.
1: Shukr alhamdulillah. Number off bata raha tha.
0: नंबर ऑफ बताया था, चले कोई बात नहीं, अब तो नंबर ऑन है. मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रही है?
1: दानिया ने धीरे धीरे डाल में डाली, दानिया ने धीरे धीरे डाली.
0: यस,
1: I love you so much. पता है पिछली बार मैंने बहुत से भूल गई थी, फिर मैंने एसएमएस किया था आपको. आई लव यू सो मच.
0: अच्छा, क्या भूल गई थी?
1: आई लव यू कहना भूल गई थी.
0: ओके, ठीक है, आज कह दिया ना आपने. बस मुझे पता है, अगर आप ना कहते तो मुझे पता होता है.
1: हाँ, किसी ने जब नहीं की थी ना
0: जी,
1: तो मैं आपको ये नहीं कहती ना आई लव यू, तो मेरा दिमाग घूमने लगता था.
0: अच्छा, मुझे एक बात बताए, जीजू को बुरा तो नहीं लगता हाँ मुझे आई लव यू कहती है?
1: नहीं, होते हैं
0: जेलस होते हैं.
1: हाँ,
0: वो तो फिर उनका होना बनता है ना. वो कहते होंगे, मुझे तो कहती नहीं है, उसको बार बार कहती रहती
1: है.
0: हाँ जी,
1: उसको कहती हूँ जलती रहो.
0: नहीं नहीं, बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए. उनका भी
1: जानू.
0: हाँ जी,
1: आपके लिए सब लोग बोलते जेलस नहीं होते.
0: बस वो तो उनका होना बनता है ना, उनका तो होना जेलस बनता है, तभी वो जेलस होते हैं.
1: अरे मेरी जान, तुम आप मेरी जान है ना.
0: चले,
1: जान से बोलती है ना, किसी और को थोड़ी बोलती हूँ.
0: चले जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत. हाँ जी,
1: क्या कहा आपने?
0: मैंने कहा बड़ी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी.
1: मेहरबानी कोई बात नहीं.
0: चलो फिर, अपना बहुत सारा ख्याल रखे.
1: बस आपका ये जो हंसना है ना, ये बस दिल में छू जाता है, दिल को बस ये चुरा लेते हैं आप,
0: इसीलिए तो हंसती हूँ.
1: जल्दी तो मैं आपको हंसाती हूँ.
0: चले फिर, इसी बात पे मैं अगला गाना प्ले कर रही हूँ, उसको सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा मेरा साथ. हाँ जी,
1: स्मार्ट शेयर बाइक क्यों नहीं आते अब गाना गाने?
0: गाना गाना है आपने?
1: स्मार्ट शेयर बाइक क्यों नहीं आते गाना गाने अब?
0: गाना गाने आते हैं ना, अभी तो गाना सुना के गए, उनका गाना प्ले भी किया है.
1: उन्होंने सुना था? अच्छा, मैंने लेट कॉल किया ना.
0: बस आप गौर से नहीं सुनती ना मेरा शो, बस कट्टी
1: जाने में सुनती हूँ. वो जो ये गाने वाला सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा
0: ओ कॉल ड्रॉप हो गई मिसेस अली की, और ये अचानक क्या ही हो गया है. खैर कोई बात नहीं. 03000113488 हमारा लाइव कॉलिंग नंबर. गाना प्ले कर रही हूँ एक अदर, इसको सुनते हैं और आगे चलते हैं.

0: करते हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क अपना घर मोरो और मोरो की आवाज GFM 88। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जेकर तवा के मैदे की तकलीफ है, सीने की जलन, खट्टी उगर...

0: और इसके साथ से जी आप लोगों के मैसेजेस जो कि मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. अच्छा, हमें मैसेज किया है जी मेमन मोहल्ला मोरो से उस्ताद राहिब एंड माशूक मेमन मेमोरियल मुमताज मशीन वाला. ओके, और हुमैर अहमद मेमन फ्रॉम ओल्ड जतोई एंड न्यू विलेज अल्लाह वरायो पहाड़ हाउ आर यू बाजी. जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है. थैंक यू सो मच. पहुंच गया आपका मैसेज, एक ही पहुंच गया. वाओ, व्हाट अ सॉन्ग. कौन सा वाला? मिसेस अली जीजू से कहो बड़ा पैकेज करवाए, मेरी बात करते वक्त कॉल कट गई. एक्यूरेसी. अच्छा, कहते हैं कि नंबर ऑफ बता रहा था, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ बताती है. नंबर ऑफ बताती है. कौन बताती है? अच्छा, वो ठीक है. लगता है आज दानिया ने दाल पकाई है. हाँ जी, दानिया ने दाल पकाई है.
1: और

होश हो ना खबर हो, शब्द लेना सहर हो, एक ऐसा सफर हो और तुम साथ हो। रात जुगनू सितारे

0: Soccer FM 80. अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।

आरजे रुखसा है आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक चुका है। हम चलेंगे आगे लास्ट लकी कॉलर्स को भी इंटरटेन करेंगे। 03000 111 3488

0: क्या कर रहे हैं। आपके लास्ट में लकी कॉलर चेक करते हैं जी, कौन? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। सागर भाई कैसे? ठीक ठाक।
1: पहचान लिया मैंने आपने मुझे,
0: है ना? पहचान लिया, बस मैं पहचान लेती अच्छा। हूँ कभी कभार ऐसा कर लेती हूँ मैं।
1: और मैंने कभी कभार मैं रोज पहचान लेती आवाज
0: है ना। चलिए ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि मैं रोज पहचान रही हूँ। अच्छा लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: नहीं आज की अच्छी बात कुछ हर किसी को पता तो है ही है कि अच्छी बात क्या है, समझते सभी है, फिर क्या है मेरे को समझाना। अच्छी बात यही है कि गर्मी को तो पानी बहुत पिलाया करो आवाम को,
0: पानी बहुत पिलाया करो।
1: हाँ आप आवाम को बोल देना आप तो नहीं पिलाएंगी आज से। ओ आर एस वगैरह जलसी वगैरह पानी प्यास से एक गिलास दिए तो दो गिलास पानी का पिए भाई, गर्मी बहुत
0: है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है,
1: जबरदस्त।
0: और कुछ कहेंगे?
1: टेंपरेचर क्या है मैम?
0: टेंपरेचर वाला सेगमेंट तो खत्म कर दिया हमने,
1: तो गाने का सेगमेंट भी खत्म कर दिया।
0: गाने का सेगमेंट भी खत्म कर दिया,
1: गई भैंस पानी में।
0: शाम को निकालेंगे इसको पानी से।
1: 7 बजे?
0: हाँ जी 7 बजे।
1: अच्छा 7 बजे का मुझे पता नहीं था, यकीन करें कसम से मुझे पता नहीं था। ये तो उस दिन मैंने कॉल कर दी, फोन चला तो चल रहा था आपका प्रोग्राम।
0: चले जबरदस्त
1: कर दिया।
0: हाँ जी 4 बजे वाला तब्दील कर दिया ना, खत्म नहीं किया, तब्दील किया है 7 से 8 में।
1: अच्छा चेंज किया है?
0: हाँ जी बिल्कुल चेंज किया है। और कुछ कहेंगे?
1: और बस 11 बजे ये कॉल मिला रहा था, 11:30 बजे कॉल मिली नहीं, लगी नहीं, अभी ये लास्ट और लकी कॉल लगे, ये भी शुक्र है।
0: चलो बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना।
1: ओके ओके, आप भी अपना ख्याल रखें और आवाम को भी बोल दें।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू। गाना प्ले कर रही हूँ जी, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सॉन्ग जो कि आजकल बड़ा फेमस है, और फाइनली इसी के साथ लेंगे आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचैट होगी इस प्रोग्राम में कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजेएस के अलावा 7 से लेकर 8 बजे तक होगी आज शाम को, तो सुनना मत भूलिएगा। 1 घंटा नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन 7 से 8 वाली, और कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह। सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta Bharosa.
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो
0: इट्स 1 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: गाना है नेतन्याहू ट्रंप के ईरान ते हमला न करण की खातरी भी कराई है ईरानी परदेही वजीर अब्बास चिराग़ची जा इसराइल से झड़पन बाद मुख्तलिफ मुल्कन के हममनसबन से राबता अब्बास चिराग़ची फील्ड मार्शल सदार सुमनी साहब गाल बोल कई ईरानी परदेही वजीर सऊदी तुर्किया कतर और फ्रांस के हममनसबन के फोन कयो इसराइल से पैदा थल मौजूदा सूरतहाल से गाल कयो ईरान ते इसराइली हमलन बाद ईरान इराक ए शाम फिजाई हदू बंद कर छदियो खिते में हाई अलर्ट परदेही मीडिया मूजिब ईरान इराक शाम पंज फिजाई हदू बंद कर छदियो आहिन यमन हॉसिन बे खिते में इसराइली बहरी बेड़न की दाखिला ते मुकम्मल तौर ते पाबंदी लागू कर छदी गलगित बल्तिस्तान चूंडन में पीवी मैदान मारे वरतो जियालन जो जशन 24 सीटन में 18 सीटन का नतीजा अची व्या गैर सरकारी और गैर रस्मी नतीजे मूजिब पीपल्स पार्टी 9 सीटन से कामयाब 2 सीटन से नवाज लीग 1 से भारत अल मुस्लिमीन ए 6 सीटन से आजाद उम्मीदवार कामयाब थे बिलावल भुट्टो जरदारी कामयाबी से जियालन के मुबारकूं

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
3: फादिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

शर्मा जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी यहाँ पर नाच आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और तरीकेकार क्या होने वाले प्रोग्राम में शामिल होने के वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ जरा ये जो बात बताने वाली होती है कि भाई आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है तो उसकी जानिब आ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में अगर सवाल की बात की जाए तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है। जरा मैंने ये सोचा कि भाई बहुत से लोगों का ये एक ख्वाब होता है कि हम फेमस हो जाएं, हमारे बहुत ज्यादा वाले फॉलोअर्स हों और हम मतलब हम जहां भी जाएं तो हमें लोग जाने। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए सवाल सोचा है ना वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि आप फर्ज कर लें कि अगर आप एक दिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाए सिर्फ एक दिन के लिए तो आप उस एक दिन में क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का सवाल आप लोगों से मैंने पूछा है कि अगर आप फर्ज कर लें एक दिन के लिए आप बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाते हैं तो आप उस एक दिन में किए और मुझे बताएं जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्टार दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है और जी लाड़काना FM 88.8 आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। पेज पर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए ताकि लोगों को पता चल सके भाईजान कि मार्केट में कितने अच्छे वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो बिल्कुल जी आप अवेलेबल खुद भी करा सकते हैं, अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो आप बस डायल करते हैं 03-15-799-0595। ये नंबर डाल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके गोठ में, आपके सिटी में अवेलेबल होनी चाहिए व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बता रहे हैं कि फर्स्ट कर लें अगर आप एक दिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाएं तो आप क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे जल्दी से बताएं, मुझे जानना है और साथ साथ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चाहिए। बिल्कुल जी, आप लोगों की मुझे लाइक्स और शेयरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा वाली चाहिए और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद जुड़ते जा रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत ज्यादा वाला आपका शुक्रिया है। और साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो खूबसूरत भी बनाने वाले हैं। अगर आप खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती में चाहते हैं कि भाई जो है ना वो कभी भी ऐसा ना हो कि हम खूबसूरत हो जाएं, जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वो खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है, तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको खूबसूरती मिलेगी।

0: वो खूबसूरती मिलेगी जो कि आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगी। तो वाइजेश ब्यूटी क्रीम और मजीद बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आप लोगों को हम बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल सही आप लोगों के मैसेजेस हैं यहाँ पर, और हमारे साथ एस एन मौजूद है। वाले मसला मुस्कान जानी, आप कैसी हैं? आप जाना अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दे। और जाना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मैं जाना मेरे खास सलाम आपको और आपकी अम्मी जान को और आपकी दीवानी एस एन हमारे साथ। क्या बात है एस एन, आप इतने दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल हुई है, कहाँ गायब हो गई थी। और बशीर लिगारी हमारे साथ हैं, गोट मीर खान लिगारी, वालेकुम असलाम, अदाजु मोहब्बत हुआ है। और राशिद अवान हमारे साथ ही राम मेहरापुर, कहते हैं सलाम सिस्टर सदरा मुस्कान, मैं क्रीम इस्तेमाल, अच्छा चले ठीक है, हाँ कहते मैं क्रीम तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन आप जो इतना बताती हैं तो अब मेरा दिल कर रहा है कि वाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल, ये जितने भी हमारे साथ लोग ऐसे ही ना जो कहते हैं असा क्रीम नायू होने दा, असा क्रीम मतलब करे हई को सभी मारण की चवंदम, तो वाइट एज जी का लवली क्रीम अव ना इवं सभी जलाये अव, तो वाइट एज की लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, फेयरनेस क्रीम की जरूरत मुझे ख्याल में हर कंखे पवंदी है। तो तुम वाइट एज की लवली क्रीम लगा सो जी मू अगर कोई भी प्रोडक्ट ना लगाइंदा तो वाइट एज लवली क्रीम तव जलाया है, तो तुम लाज मी लगाए जो मुख बुधा जो तुम्हारे रिजल्ट की मिलन पाया। और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक कहते हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप की वो तलख है अंदर ही अंदर रिश्तों को खोखला कर देती हैं। बिल्कुल जी तमाम सही था चो। उनका अलावा वासु भाई हमारे साथ है, कहते अदी सिडो असा भी अच्छी हुयासी, हवा में उडड़ी अदी सिडो सलाम हवा में उडड़ो पया, ताने हवा हली थी वैसे बुधा तो सही, इतने तो ढी जो गर्मी आए सफा घनी गर्मी। और हिदायतुल्ला क्या कहते हैं? याद, अच्छा यानी कि आपको मेरी याद आ गई और मैं यहाँ पर टपक गई। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप कैसी हैं? आज ये सॉन्ग चलाओ आसान से करे लाड़कानो, अच्छा यो सच में ही गानो आए, चलो मैं सेफ क्या थे मुख्य मिलियो तो हलायूँ था ठीक है। और मलिक जफर रत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट से, ओके जी कहते हैं बहुत शुक्रिया भाईजान। और मुनस्सिब असीर हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। किशोर भाई कहते सलाम अदा की आए हो, कैसा आए हो, खुश आयो? बिल्कुल मुंह जड़ा स्मार्ट, बिल्कुल जी तमाम जड़ा स्मार्ट, शायद तमाम का हम थोड़ा वध कर दो अच्छा नजीर को सुभागियों में सुन रहे बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका। इमरानी आवाज हमारे साथ की थे, आपका शो ग्रेट है और आपकी आवाज भी, बहुत शुक्रिया जी। और ये जी हमारे साथ मौजूद है उमर, उमर वालेकुम अस्सलाम, उमर आपका भी। और मोलाई मुजाहिद बोजदार है ठूप चूसल से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। सिडो जी आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, जब से मैंने वाइटिश के प्रोडक्ट्स लगाए तब से तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई हूँ, अच्छी से मुराद मना गोरी तो आप भी लगाइएगा ताकि आप भी खूबसूरत और गोरे गोरे हो जाएं। और जाकिर हुसैन कोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बिल्कुल जी सबके मैसेजेस, सबकी बातें और सबके जो टॉपिक के ऊपर आंसर होंगे वो मैं शामिल प्रोग्राम करती जाऊंगी। आप मुझे बताएं आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रही हैं, कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोग्राम अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आपके एरिया में मिल रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स? नहीं मिल रहे तो जल्दी से अवेलेबल कराइए ना। और इसी के साथ साथ आज मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताइए फर्स्ट के लिए अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं, बहुत ज्यादा वाले फेमस हो जाएं, तो आप क्या करेंगे उस एक दिन में, बताएं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर टाइम चेक नहीं जी, टाइम हो चुका है कि हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिए, सुनते रहिए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड दी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगा दे जाइए, खूबसूरत होते जाइए।
1: सचल की सर मस्त धरती, फातिया मेहरान।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

साईं बाज जो गानो हलायो थमो यहां पर हमारे साथ हैं जी जाकिर हुसैन को जवाब दींदी गडोगड तवी क्रीम के मशहूर भी कंदी चलो ये भी अच्छी बात है। और हिदायत अल्लाह कहते टॉपिक एंसर सिद्रा आपने एक दिन के लिए फेमस बनाया है वो भी दोपहर तो हो गई है नहीं वो कल का दिन समझ लिया आप तो उसके अलावा जो है ना किशोर भाई क्या कहते टॉपिक अदि एक दिन फेमस हुए तो खुशी मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे सेल्फियां और वीडियोज बनाएंगे और दिन खत्म हो जाएगा। पैसो हिकड़े डी लाइ मिले हाँ तो बैंक में रख रही हूँ जमीनों लिख रही हूँ गोबर का बात जो है ना हमारे पैसों पर आ जाती है। अच्छा उनके अलावा कह रहे अदी हिकड़े डी जो सीएम जो ठाई हाँ उन जो थोड़ो मतलब जो है ना उनके साइड से रखो जो पूछो वो बुधायो। अच्छा उन खा अलावा एस खानी हमारे साथ एस खानी वाले को मसलाम आज सिद्रा पशो भी नहीं नाइस है पहली बार कमेंट कर रहा हूँ और आप शो के नंबर तो बता दें बिल्कुल जी शो का नंबर है 03 1

थींदो रहंदो और कंहिं ते टॉपिक हिकु फेमस मां ख़्वाब ॾिठो सुबुह जो उथियासीं त तारी वारा कक बिल्कुल ईअं चई सघिजे थो। ओके सो अगरि तव्हां सां ईअं सीन थी वञे त पोइ तव्हां छा करण वारा आहियो? बिल्कुल मां इहो तव्हां खां पुछां थी ऐं तव्हां खां ॼाणींदासीं, ठीकु आहे? ऐं हिते जेको आहे गानो त ॿुधोसीं, हाणे तव्हां ज़रा ॿुधंदा बाबा त वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट जो तव्हांजी ज़िंदगी में जेको आहे न एंट्री शो ज़रूरी आहे। अक्सर ई थींदो आहे त असांजी ज़िंदगी में कुझु चीज़ुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, कुझु माण्हुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे, पर कुझु चीज़ुनि जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। अगरि ॾिठो वञे त वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स उहे प्रोडक्ट्स साबित थिया आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाइनि था ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे हमेशह जे लाइ जेको आहे न हू प्रोटेक्ट बि कनि था, लॉक बि करे छॾनि था। ईअं न त सिर्फ़ तव्हां प्रोडक्ट लॻायो था त तव्हांखे ख़ूबसूरती मिली थी, तव्हां छॾे ॾियो था त पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती बि तव्हां खां हली वञे थी, बिल्कुलु ईअं कोन्हे को। सो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जा प्रोडक्ट मौजूद आहिनि। अगरि तव्हां कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु चाहियो था त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे हर तरह जो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे। जीअं पहिरियां अदे असांखे चयो त मां ब्यूटी क्रीम न लॻाईंदो आहियां पर वाइट एज जी लवली क्रीम लॻाईंदमि, बिल्कुलु ईअं ई। अगरि तव्हां ब्यूटी क्रीम नथा लॻायो, वैसे त कोर माण्हू नाइट क्रीम तव्हां लॻाईंदा आहियो त तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा। अगरि तव्हां एक्नी यानी कि दाणनि खां परेशान आहियो त तव्हांजे लाइ वाइट एज जो जेको आहे न डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद आहे। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगरि तव्हां नालो वठी करे परचेज कयो था त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो ऐं तव्हांजे दाणनि खे बिल्कुलु ख़तम करे छॾींदो आहे। सिर्फ़ दाणा न बल्कि तव्हांजे चेहरे जा निशान आहिनि या फिर तव्हांजे चेहरे ते कोई धक जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे जेको तव्हां काफ़ी टाइम खां रिमूव करणु चाहियो था पर रिमूव न पियो थिए, त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूद आहे, तव्हां वठी सघो था, इस्तेमालु करे सघो था। उन खां अलावा जेको आहे त वाइट एज जो साबुण तव्हां वटि मौजूद आहे, वाइट एज जो फेस वॉश तव्हां वटि मौजूद आहे जेको वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे। सो ही जेतिरा बि वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि ही सभु जेके न हू नेचुरल अज़ा सां तयार थियल आहिनि ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ बिल्कुलु सफ़ा परफेक्ट आहिनि। तव्हां मर्द आहियो, मायूं आहियो, तव्हां सभु लॻाए सघो था। ऐं सभ खां मज़ेदार ॻाल्हि जेका मूंखे लॻे थी त वाइट एज वारा जेके प्रोडक्ट आहिनि ही सभु जेके न नेचुरल अज़ा सां तयार थियल आहिनि, यानी कि अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का त तव्हां इहो चओ त बाबा केमिकल हूंदो या असां लॻाए सघूं था नथा लॻाए सघूं, बिल्कुलु तव्हां लॻाए सघो था। छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न फ्रेश बणाईंदा, फेयर बणाईंदा, तव्हांजी स्किन तां जेके मसला आहिनि उहे सभु ख़तम करे छॾींदा ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा ईअं चमकंदी वधंदी। सो मर्द हज़रात आहियो, मायूं आहियो, ख़वातीन जेके बि ॿुधनि पियूं, हाउस वाइफ आहियो या फिर जेके टीनेजर छोकिरियूं असां सां गॾु मौजूद आहिनि, टीनेजर जेके छोकिरा असां सां गॾु मौजूद आहिनि, त तव्हां एक्नी जी वजह सां अगरि परेशान आहियो त डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां। बाक़ी अगरि रही ॻाल्हि वाइट एज लवली क्रीम जी त ही त तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजो फेवरेट प्रोडक्ट आहे, असां पाण बि इस्तेमालु कंदा आहियूं। जेका शइ असांखे पाण खे वणंदी आहे त बाबा उहो मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे मां तव्हांखे बि ॿुधायां, तव्हां सां बि शेयर कयां, जीअं जेके लिसनर्स असांखे ॿुधनि था उन्हनि खे बि थोरो फ़ाइदो पहुचे। मार्केट में जॾहिं तव्हां वेंदा त मार्केट भरियल पियो आहे बाबा प्रोडक्ट्स सां ऐं जॾहिं तव्हांखे उहे सभु प्रोडक्ट तव्हां ॾिसंदा त तव्हां थोरो वठणु घुर्जे कहिड़ो न वठणु घुर्जे, हिननि में जेको आहे न इहो ॿुधाईंदी आहियां त तव्हांखे ख़बर आहे जेको प्रोडक्ट इस्तेमालु जेको वठो पिया त उहो कहिड़ो आहे, उन जो छा तव्हांजी स्किन ते कीअं जेको आहे वर्क करण वारो आहे। सो अगरि तव्हां वाइट एज लवली क्रीम वठो पिया त वाइट एज लवली क्रीम उन्हनि सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे जेके मेकअप यूज़ नथा करे सघनि, जेके कोई डेली बेसिस ते कोई कमु कंदा आहिनि, कोई तव्हां जॉब कयो था, तव्हां स्कूल गर्ल आहियो, कोई बि हिन में न वाइट एज लवली क्रीम में एज लिमिट बि कोन्हे का त तव्हां कहिड़ी उमिरि में लॻाए सघो था। हिन में हर जेको आहे न हर कोई इस्तेमालु करे सघो था वाइट एज जी लवली क्रीम, तव्हां ॿार आहियो, तव्हां जवान आहियो, बूढ़ा आहियो, मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था। सो वाइट एज लवली क्रीम जेका आहे रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड कया विया आहिनि जंहिंमें वाइटमिन B3 आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन डी आहे ऐं उन खां अलावा सनस्क्रीन बि अथसि। सो अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा तव्हांजे लाइ सनस्क्रीम अगरि तव्हां मार्केट में अलॻि सां इस्तेमालु कंदा आहियो वठण वेंदा आहियो त सनस्क्रीम सही वारी तव्हांजे स्किन ते सूट करण वारी सनस्क्रीम मूंखे नथो लॻे त अॼु ॾींहं ताईं कंहिंखे शायदि मिली हूंदी। जेतिरा जेको आहे न इहे जतन कबा आहिनि त असांखे सही तरह जो प्रोडक्ट मिले जेको तव्हांजे स्किन ते सूट बि करे, त सनस्क्रीम जेको हिकु अहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा घणो कंफ्यूजिंग लॻंदो आहे मूंखे, त अगरि तव्हां चाहियो था त इन कंफ्यूजन में तव्हां न पओ ऐं तव्हां वटि कोई अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूद हुजे जेको तव्हांजी स्किन जेका न उहा प्रोडक्ट बि करे ऐं तव्हांजी ज़िंदगी बि आसान बणाए त तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जे तरफ़ अची सघो था। ऐं वाइट एज लवली क्रीम जेका लाइट वेटेड फार्मूलो आहे ऐं तव्हांजी स्किन जे लाइ सफ़ा बहितरीन साबित थियण वारी आहे। सो वाइट एज लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो, उन सां गॾोगॾु जेको आहे न इस्तेमालु करण तरीक़ेकार बिल्कुलु ईअं आहे त वाइट एज लवली क्रीम खे तव्हां ॾींहं जो लॻाए सघो था, राति जो कहिड़े बि टाइम लॻायो, मुंहुं धोई करे लॻाइजो, सही आहे। ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे हीउ तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा सुम्हण खां पहिरियां, ठीकु आहे, पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो कोई बि प्रोडक्ट लॻायो था त ऐं हथनि खे बि चङे तरीक़े सां वॉश रखंदा कयो जीअं तव्हांजो जेको प्रोडक्ट आहे न उहो क्लीन तरीक़े सां तव्हांजे फेस ते लॻे। ऐं जॾहिं वाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो था त उहा बि तव्हांखे राति जे टाइम लॻाइणी आहे ऐं बिल्कुलु तव्हां पंहिंजो फेस वॉश करे पोइ ई लॻाए सघो था। सो वाइट एज ब्यूटी सो बि तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे, वाइट एज जो फेस वॉश भी तव्हांजे लाइ न मौजूद आहे। अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हां फेस वॉश लॻाए सघो।
था, तव्हां साबुण लॻाए सघो था जंहिंमें तव्हां ईज़ी फील कयो, जेको तव्हांजे लाइ आसान हुजे, तव्हां उहा शइ इस्तेमाल कयो। छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे। सो इहो ई फ़ाइदो आहे, इहा हिन जी कामयाबी आहे। उन खां अलावा तव्हां कोई बि प्रोडक्ट हिन जो परचेज़ करे सघो था, तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो, मुनासिब क़ीमतुनि में मिली वेंदो, तव्हांजी हर स्किन टोन जे लाइ आहे। ऐं नथो मिले त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। हीउ नंबर जल्दी जल्दी डायल कयो, जे तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट अवेलेबल थी वञनि, ऐं तव्हां बि जल्दी जल्दी इस्तेमालु कयो।

मिठो ॻाल्हाए महफ़िल फुरे वई आहे, तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त अगरि तव्हां फ़र्ज़ कयो हिकड़े ॾींहं जे लाइ तव्हां फेमस थी वञो था, सफ़ा घणा फेमस थी वञो था, हर कोई तव्हांखे सुञाणे थो, वाह वाह जाने वञो बसि माण्हू तव्हांखां सेल्फी घुरे, अगरि अहिड़ा तव्हां फेमस थी वञो हिकु ॾींहं जे लाइ त पोइ तव्हां हिकु ॾींहं में छा छा कंदा? कहिड़ी कहिड़ी ख़्वाहिश आहे जेका तव्हां पूरी करणु चाहियो था सिर्फ़ हिकु ॾींहं जे लाइ? हुन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम जो हिसो थियो पिया, बिल्कुल जी तव्हांजो मुहबतूं आहिनि, अचूं था तव्हांजे मैसेजेस जी तरफ़ ऐं जेके फेसबुक ते माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, बाबा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, सही आहे?

अच्छा अनवर भाई कहते हैं अदी कम से कम मेरे बेटे की बर्थडे तो विश कयो आ प्रोग्राम में केड़े प्रोग्राम में अज थस तो बिल्कुल जी विश कना सी तवा जे पुट जी बर्थडे उन का अलावा ताजो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पया और वासु भाई कहते अदी सिडो जवाब असा जो मुआशरो एड़ो आए सजो डी मानन सा सेल्फी कढण में पूरो थी वेंदो हकीकत सिद्धार्थला कहते सिद्धराव पूछना ये था कि अगर उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो उन पर वाइपर लगाया जा सकता है बिल्कुल जी तसली से लगाइए कोई मसले की बात ही नहीं है और किशोर भाई कहते बिल्कुल अदी असा सोचो आए पर एक दिन के लिए ना पूरी जिंदगी ले चल यो सही है।

इहो कमाल अथव वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो तव्हां लॻायो था, कोन ॿुधायो त मोहम्मद सलमान खे वेलकम टू शो वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। तव्हांखे बि चवंदा भली करी आया प्यारा दा। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कि वैसे सिद्रा में फेमस होने वाला था कि मेरे अकाउंट पर रिश्तेदारों की नजर पड़ गई। अब रिश्तेदारों की नजर का तो तुम्हें पता ही जी जी, इसीलिए कहते हैं रिश्तेदारों से जरा छुपा के रखा करिए अपनी खुशियों को। और लुबी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है लुबी, गुड आफ्टरनून। सिडो जानी मैं भी आपके साथ साथ हूँ, अर्जी भुट्टो से आपका शो सुन रही हूँ। अर्जी भुट्टो वारी लड़कियों को सब बुधन थियूं। अर्जी भुट्टो जी सभी सोने छोकरन के सलाम आ बाबा, ऐं तव्हां खे प्रोग्राम में वेलकम चऊं था। ऐं तव्हां ॿुधायो था अर्जी भुट्टो में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलनि था कोन, ऐं सभिनी सोणियुनि छोकरियुनि खे चओ त बाबा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻाए। पोइ जी मिठुरी वञनि। अच्छा मोलाई मुजाहिद दोस्तार टू प्रोड्यूसर से क्या कहते हैं एक मिनट से। हाँ जी टॉपिक, अगर मैं फेमस हो गया तो आने वाले इलेक्शन में, वो तो एक दिन के लिए फेमस होंगी ना आप, पता नहीं। अच्छा फेरोज के जवाब, जेकॾहिं असां हिकु ॾींहुं में मशहूर थी वञूं त छा कंदासीं? पहिरियों अलाह जो शुक्र कंदासीं, इज़त ॾींदड़ फ़क़ति उहो ई आहे, बिल्कुल जी। ऐं पंहिंजे वालदेन खे अच्छा वालदेन सां गॾु हुन खे सेलिब्रेट। ऐं टियों चओ था मशहूर थियण जो मतिलबु आहे आवाज़ मिलणु।

बिल्कुल तव्हां वाकई ज़मीन ते घुमण जा आदि थी वञो। आजज़ी जेका आहे न उहा हिकड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, मूंखे लॻंदो आहे आजज़ी बि कंहिं कंहिं इंसान जे अंदरि हूंदी आहे। सो अगरि तव्हां आजज़ आहियो, अगरि तव्हांखे फ़क़ीर सां मिलो था त फ़क़ीर खे इहो महसूस न करायो त तव्हां हुन खां मथे आहियो, ऐं अगरि तव्हांखे बादशाह सां मिलो था त हुनखे इहो महसूस न करायो त हू तव्हां खां मथे आहे। की इंसान में बसि अगरि इहे ॿ ॻाल्हियूं अची वियूं न, हिन चीज़ुनि जी समुझ अची वई न, त हू कामयाब आहे। हुन खां अलावा अगरि तव्हां वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो पिया, त वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजे एरिया में मिलणु ॾाढो ज़रूरी आहे। अगरि नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो पिया 03-15-709-0595। अच्छा था चओ, लॻे थो शेयरिंग वारा सभु नाराज़ आहिनि। लॻे ईअं थो वाकई शेयरिंग वारा माण्हू किथे आहियो, बाबा सिर्फ़ 4 शेयर कया अथव। ॾिसो इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। और मोलाई मुजाहिद बोज़ार के सिद्धो जी लाहौती साजन चांडियो भी आपका शो सुन रहे हैं। लाहौती भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज नकी कड़ो नहीं।
2: टीम असली ग्लो हर दिन जो शाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: लॉट्स ऑफ फन लोड्स ऑफ मस्ती ओनली वन जी रेडियो थैंक यू
4: साईं वापसी तव्हां ॾे आहे बिल्कुल तव्हां ॾे मोटींदासीं काॾे वेंदासीं तव्हांखे सॼे प्रोग्राम ॿुधो पिया जनाब वाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद ही मेरे साथ कौन है बताए ना अच्छा तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में जो लोगों ने अभी भी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं फर्स्ट के लिए अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं तो उस एक दिन के फेमस होने का आप किस तरह फायदा उठाने वाले हैं ये जरा बताएं

ओके जी, सो हमारे साथ यहाँ पर साइमा मीर, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम कहती हैं, सारा मसला जो है ना वो आपके फोन का है। पहले मुझे पास चलें ठीक है। इस बात के ऊपर जो है ना हम सारा गौर करेंगे, ठीक है। और बहुत शुक्रिया साइमा, मेरी जान आप हमारे साथ मौजूद है। और ये हमारे साथ एस एन कहती है, मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं, बस एक बार आपसे मिलने का शौक बहुत है। और जाने हो सके तो फितूर ओएसटी लगाना, मुस्कान में गुम नहीं हो गई, बस आपके शामिल शो में शामिल नहीं हो पाती थी। ओके जी, लव यू टू, खुश रहे हमेशा। और फहद डेरी है, सऊ डेरी फ्रॉम नवाबशाह कहते हैं, सलामती शो तो मजो नाई साहब, मोहब्बत हूँ प्यारे भावन जो। और ये है सलामती गुलाम मुर्तजा बलोच मीरपुर खास से अदी जानी, अच्छा ये जाग जानी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है। आपका नाम गुलाम मुर्तजा बलोच है, सही सही सही सही, यानी प्यार से आप खुद को जाग जानी बुलाते हैं, जाग जाए। ओके जी, और प्यारे अंकल आपको वेलकम करते हैं। और मौलवी इस्लामदर कहते अदी चले, मैं फरमाइश आके पूरी करने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सदरा बताए कि ये कौन से प्रोडक्ट है, क्यों इस्तेमाल किए जाएंगे, तो बिल्कुल मैं आपको बताने लगी हूँ। जब पहले हमने आप लोगों से व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, तो अभी आप लोगों को बताया जाएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना शायद आप

अच्छा आदिल तव्हां जो गानो हलायम जो कोन ॿुधव छा अहिड़ो वीआईपी गानो हुयो अच्छा शिराज अली हमारे साथ साथ है शिराज आपको वेलकम करते हैं और सऊदी अरबिया से आप हमारे शो सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम एम ए अंसारी हमारे साथ है एम ए अंसारी फ्रॉम नवाबशाह कहते आई एम लिसनिंग योर शो अगर काफी टाइम से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और कहते हैं थैंक यू जी थैंक यू और कहते टॉपिक पर कहूंगा कि सुबह उठ के फेस वॉश करके बाहर निकलूंगा और हीरो की तरह स्टाइल मार के उन रिश्तेदारों को जलाऊंगा जो एक दिन के बाद सारी उम्र खून जलाएंगे चले ये भी सही बात है और ये गाना आप इंजॉय करिए आपके नाम है सखावत अली राजपुर हमारी साथी वालेकुम अस्सलाम छा लादा तुम खुश आयो

भाई जी बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय करियो साथ साथ किशोर भके दी अदी अज मुहे को गानो बुधो मुखे इय लगो ही गानो तवाजे शो में हर मानो के गालाण ते मजबूर कंदो गानो आहे चले मां ही गानो हलाण जी कोशिश कयां ती दिसूं था तने ते वाकई केर केर गालाए तो गाए भी तो या न और वासु भाई तवा के प्रोग्राम आने पे बहुत शुक्रिया और तवा सब पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो उन सा गडो गर तवा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई या कोन मुखे यो भी बुधायो पया तवा जे एरिया में मिले थी कोने तामु के इहो भी बुधायो पया।

अच्छा आदिल, जो पहला लिंक था ना मेरे प्रोग्राम का, उसके बाद जो दूसरा लिंक आया ना, उसके स्टार्टिंग में गाना लगाया था आपका, सुनिएगा जरा, फेसबुक पर तो मौजूद होगा ना। पप्पा का मोकल वठी अचो जी, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे सघो, ठीकु आहे? ऐं तव्हां घुमो फिरो बाबा, ऐं मार्केट थोरो विज़िट कयो, हुननि खां पुछो दुकान वारनि खां त किथे किथे मिले थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जीअं तव्हां वठी सघो ऐं जीअं तव्हां इस्तेमाल करे सघो ऐं जीअं तव्हां सुहिणा थी सघो, समुझो था? ऐं डायल कयो 03-15-799-0595। हाणे टाइम थियो बाबा, वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हुन खां पोइ वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां कॾहिं न वञो, हिते वेठा हुजो, मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड by White Ash Beauty Products and the Skin Beauty Products.

0: के हो तो आवाज़ भी सिंकी है। GFM 88 Network सिंकी आवाज़।
1: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए ते ठाण चाहियो था जिते हुजे तहफुस जदी सहूलियतूं ऐं मंजूर थियल सिक्योरिटी
2: तपोई भलीकार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामूं
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंजूर थियल
2: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहायशी प्लॉट्स 80, 120, 150 गज जा
1: ऐं कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज
2: हिते तव्हां खे मिलन थियूं जदीद सहूलियतूं
1: साफ मिठो पाणी
2: बिजली गैस
1: 24 कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल ऐं सभु खां वॾी ॻाल्हि ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे वेझो आहे
1: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो
2: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
2: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
1: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहुं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: सखर होम्योपैथी क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ऐं लाड़काणे जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीराणी DHMS RHMP
0: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network सिंध की आवाज
5: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके क्या फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं। अक्सर तौर पर जब लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना चाहें, ब्यूटी को बढ़ाना चाहें, खूबसूरती को निखारना चाहें, तो आपके पास इन चीजों की जो है ना वो लिस्ट होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑल स्किन टाइप होना चाहिए। दूसरी बात कि आप जो है ना वो मर्द हजरात हो या खवातीन दोनों इस्तेमाल कर सके। और तीसरी बात जो है वो ये कि जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होना चाहिए। जिन प्रोडक्ट के अंदर भर भर के केमिकल डाले जाते हैं ना, वो प्रोडक्ट यकीन जाने आपकी खूबसूरती में जो ना वो निखार तो जल्दी लाते लेकिन उसके जो रिजल्ट आप लोगों को मिलते हैं ना वो तो ठीक ठाक होते हैं लेकिन बाद में जो साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो हमेशा आप इन चीजों से अवॉइड करें। आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि लाइट वेटेड हो और आप लोगों की खूबसूरती के लिए ऐसा हो कि जब आप इस्तेमाल करते रहें, आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आप लोगों को जो खूबसूरती मिले वो हमेशा आपके साथ मौजूद हो। तो बिल्कुल आप लोगों के पास वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो तो जनाब ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा है। तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर एवोकाडो मिल्क और एलोवेरा मौजूद है। ये तीनों चीजें मिलकर जनाब वाइट एज ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है। उसके बाद आपके पास वाइट एज का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, वाइट एज का फेस वॉश भी मौजूद है एंड वाइट एज लवली क्रीम मौजूद है। वाइट एज लवली क्रीम तो मैं सोचती हूँ कि इसे तो हर एक इंसान को लगाना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है। तो वाइट एज लवली क्रीम जो कि भाई ऑल स्किन टाइप के लिए है, एज लिमिट भी कोई नहीं है कि आपकी उम्र अगर छोटी है तो नहीं लगा सकते, बिल्कुल ही लगा सकते, बच्चे बूढ़े जवान सभी लगाएंगे। और वाइट एज लवली क्रीम के अंदर जो है ना वाइटामिन से तैयार शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी अवेलेबल है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से मुराद ये कि ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे, खास करके वो टीनेजर्स लड़कियां लड़के जिनके चेहरे पर दाने बहुत ज्यादा आते हैं। और मैंने कई मरतबा ये चीज नोटिस करी है कि अगर आप की उम्र बढ़ जाती है, अगर आपके चेहरे पर दाने एक मरतबा आ जाते हैं तो फिर उम्र जितनी भी बढ़ जाए आप लोगों को ये मत किया करें ऐसे कि हो जाएंगे निशानात खत्म हो जाएंगे। आप जो है ना वो वक्त के साथ साथ अपनी इन चीजों का इलाज ढूंढना शुरू करें। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के चेहरे पर एक्नी खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर रिंकल खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे के निशानात खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर चोट का निशान हो, जलने का निशान, ये तमाम निशानात रिमूव हो जाते हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा और रात के टाइम लगा सकते हैं, फेस वॉश लाजमी कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो फेस वॉश करना लाजमी होता है, तो लाजमी आप ये चीजों के ऊपर जब आप इन चीजों को और मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आप लोगों को बहुत अच्छी वाली जो है वो खूबसूरती मिलेगी। और साथ साथ आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके एरिया में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके।
1: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे।
0: अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू वारो गानो हलायो गानो डेडिकेट कनासी ऐसा अनवर भाई जे पुट रखे, ठीक है? अनवर भाई ही गानो तमान जे पुटड़े जे नाले आहे उन जी सालगिरह आहे, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सही ही गानो असान जी तरफा सानी पूरी टीम जी तरफा तमान के डेडिकेट आहे। वरी अला ईअं थींदो आहे न, मयारूं अहिड़ियूं ॾींदा आहियो मूंखे, मुंहिंजा लिसनर्स अहिड़ियूं मयारूं ॾींदा आहिनि, मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे हलुड़ी मां केॾो कुझु कंदी आहियां तव्हां जे लाइ पर पोइ बि तव्हां मतिलबु मूंखां ख़ुशि न आहियो थींदा पर चलो ठीकु आहे, मूंखे लॻंदो आहे कॾहिं मुंहिंजा लिसनर मूंखां ख़ुशि कोन थींदा, सो ख़ैर आहे बसि न थियो भले कुझु। तव्हां बसि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी कजो, सही आहे? इन खां अलावा अगरि तव्हां कॉल करणु चाहियो त कॉलिंग नंबर आहे 0332-13-22-88, 0332-13-22-88 असांजी कॉलिंग नंबर आहे। मां कुझु कॉल्स वठंदमि, हुन खां पोइ तव्हांजे कॉमेंट तरफ़ अचूं था, ठीकु आहे?

0: तव्हांजो प्रोग्राम वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आहे जनाब, ऐं हिते कॉल वठूं था। कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। कॉल, हैलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केरा सस गॾु मौजूद आहे? ओके, किथां कॉल कई आहे प्यारा भाउ?
1: ज़िलो खैरपुर।
0: ओके, खैरपुर मां कॉल कई आहे, ज़िले खैरपुर मां। मूंखे ॿुधायो, प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो असांजो?
1: बिल्कुलु,
0: इहो बि तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं बि ॿुधंदा कयो। मूंखे ॿुधायो, हिन प्रोग्राम जेको कयां थी, हुन नालो तव्हांखे ख़बर आहे?
1: ब्यूटी क्रीम आहे, ब्यूटी क्रीम।
0: जी जी, वाइट एज ब्यूटी क्रीम। ओके, इरादो आहे, इस्तेमालु कंदा या इस्तेमालु कयो पिया? अच्छा, टॉपिक ॿुधो अथव? अच्छा, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? ओके, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल की प्यारा भाउ।

0: ओके जी, कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। ही वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हैलो,
1: अस्सलाम वालेकुम भाजी।
0: वालेकुम अस्सलाम, केरु मौजूदु आहे?
1: भाजी शिकारपुर खां जमालदीन भयो।
0: ओके जमालदीन भाउ, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
1: अलहमदुला, शुक्र अलाह, सभु ख़ैर, असां ख़ुशि आहियूं।
0: जी जी जी जी, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: जी जी बिल्कुलु भाजी, ॿुधो पिया।
0: टॉपिक ते छा चवंदा? ओके ओके ओके, क्रीम इस्तेमालु कई आहे कहिड़ी?
1: हा क्रीम इस्तेमालु, जल्दी इस्तेमालु कंदा, तव्हांखे साबुण इस्तेमालु कयूं पिया।
0: चलो साबुण लॻाए पिया।

0: एंड पैरन भाव जो प्रोग्राम बुद्ध प्यास हो, थैंक यू सो मच। ओके जी मैडम, आप जैसे की आवाज लगाई है लिस्ट में तो हम बताएंगे किसने फरमाइश करी, लेकिन ये वाली भी हम कॉल ले लेते हैं। ओके सर, कॉलिंग नंबर 0333221322 एंड 88। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केयर मौजूदा
1: आफिर लखनऊ से बोल रहा मोरो का।
0: ओके मोरो का कॉल किया, प्रोग्राम बुधो पे आसान जो आवाज कट जी तो
1: क्रीम।
0: हेलो, जबरदस्त जबरदस्त, मुके बुधा इस्तेमाल कयो पया मोरो में मिली थी।
1: जी मोरो में मां सुभाणे वठी ईंदो मां जांच कराई आहे, दोस्तनि बि ॿुधायो आहे त मोरो में मिले थी।
0: चलो जबरदस्त जबरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा टॉपिक ते छा चवंदा?
1: टॉपिक ते मां जे अगरि हिकिड़े ॾींहं जे लाइ फेमस थींदुसि त ग़रीबनि जी ऐं मज़दूरनि जी ऐं मिसकिननि जी यतीमनि जी मदद कंदुसि।
0: हिकु ॾींहं में करे सघंदा? पहुतासीं। चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा?
1: दोस्त आहे न अमल दिलो शमी दिलो मोहन साहिब
0: ऐं
1: सैयद इमदाद अली शाह बुखारी साहब, असांखे हिकिड़ो कलम थो ॿुधायो हुजे। इंतज़ार मां मुत बराबर अलाए कन यार तूं ई जे।
0: चली मां कोशिशि कयां थी। ठीकु आहे,
1: कोशिशि न कजो, लेकिन
0: टाइम थोरो बचो आहे, टाइम थोरो बचो आहे न, लास्ट में वञी कुझु 8-10 मिंट बचा आहिनि। जी जी, थैंक यू सो मच प्यारा भाव, प्रोग्राम में कॉल के लाइ सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए। माशाल्लाह जॾहिं सोबर माण्हू प्रोग्राम में कॉल कंदा आहिनि त वाकई इलाही सुठो लॻंदो आहे उन्हनि सां माण्हुनि सां ॻाल्हाए। ऐं ॿी कॉल वठूं था, ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। इहो छा, इहा कहिड़ी हरकत आहे? ओके जी, और हम ये वाली कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कहने से सगट मौजूद
2: अलीजा।
0: अलीजा कॉल करिए आप। अच्छा मीरपुर क्लास में कॉल? मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं अलीजा?
2: मैं भी ठीक हूँ।
0: ओके टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगी अलीजा?
2: टॉपिक तो आज मैंने सुना नहीं है, बता दें।
0: टॉपिक ये है कि अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं तो उस एक दिन में आप क्या करेंगी? फेमस इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आप देखकर सोचती है ना कि भाई मैं भी अगर फेमस होती तो ये करती।
2: मैं सबकी मदद कर दी जो भी गरीब है उनकी।
0: चलिए मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है?
2: मैंने आपको बताया था ना कल कि मैं प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल नहीं करती अभी तो, पर यकीनन मैं करूंगी जरूर।
0: चलिए मिल रही मेरे खास में या फिर अभी तक यही शिकायत है कि अभी अवेलेबल नहीं हुए?
2: नहीं है, मैं गई नहीं ना अभी।
0: चलें आप मालूमात लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है?
2: इंशाल्लाह 2-3 दिनों में
0: जाऊँ। ठीक है, और कुछ कहेंगी?
2: अभी तो टाइम नहीं है वरना फरमाइश करती
0: जाऊँगी। चलें ठीक है, रहने देते हैं। और दोस्तों को याद करें जरा। ओके थैंक यू सो मच अलीजा, मेरी प्यारी सी बड़ी आप प्रोग्राम में कॉल करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराती रहें, और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब कॉल जो हैं वो जरा सी साइड पर रखते हैं। क्योंकि टाइम बहुत ही थोड़ा सा है और आपके मैसेजेस भी मैंने पढ़ने हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ने, तो जरा उनकी जाने भी आ जाते हैं। और शोनी हमारे साथ कहती है यहाँ पे जाननी मैं भी आ गई आपके शो में। एक बात बताऊँ आप ही, मेरी मम्मा कहती हैं मुझे और भाई को कि पता नहीं आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी कब ओपन होंगी, पूरा दिन आपने घर जो है वो सर पर उठाया हुआ है, तो आप इतनी शरारतें मत किया करे ना कि अम्मी जान को ऐसा बोलना पड़े। और उसके अलावा हैं जी ये साइम अमीर कहती है वाह ग्रेट, बस सरमा ये तव्हांजो तारीफ़ूं खपनि, बाक़ी त बाक़ी सभु फर्स्ट क्लास है। अच्छा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन हमारे साथ है। दिलावर हुसैन सोलंगी भाई, बारी सिद्रा अगर मैं एक दिन के लिए फेमस हो गया ना तो सबसे पहले मैं बारी सिद्रा और इमरान खान से मिलता, क्योंकि मैं दोनों का फैन हूँ। और थैंक्स भाजी, आबदा परवीन जी का गाना लगाइएगा, डेडिकेट आसिफ सोलंगी, मुदस्सिर और मुबशिर सलीम एंड शहबाज के नाम। ओके जी बना दिले मायूस को, दिले मायूस। राजा किशोर भाई कहते हैं फेमस होकर गरीबों की कैसे मदद होगी। मैं वही सोच रही थी, क्या पता वो सोच रहे होंगे कि हम फेमस होंगे तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके जी, मायरा भी हमारा शो सुन रही है, थैंक यू सो मच मायरा।

अच्छा दर्दे दिल कहती हैं कि जगा दो मुझे, हटो हटो। अस्सलाम वालेकुम चंदा, आप कैसी हैं? वैसे आज आप आने में जरा थोड़ा सा देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है वाला सीन बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। हिदायतुल्लाह कहती हैं कि मानो भले। थैंक यू। ए एम अंसारी कहते हैं कॉल नंबर बताओ। कॉल नंबर 2888। आप कल ट्राई कीजिएगा, ठीक है? दर्दे दिल कहती है सॉरी आई एम लेट। थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा। हिदायत लगे थे, वैसे मैं बहुत खुश हूँ आपसे। दर्दे दिल भी कहती है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो ये तो दो लोगों का हो गया ना, बाकी सारे लोग तो नहीं बोल रहे ना। और हाले सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। ओके ये क्या कहते हैं, अदी कल जे को ता किरायो वधायो ना, उनजे करे जो बस में रश घटा, तो फिकर न कर अल्लाह वडो ना। वैसे सच्ची बुधाया तो जदी रश थोड़ी घट हुंदी आ ना, तो मुखे लगंदो आ सुकून आ जो लाइव शो प्रोग्राम में मां ई फील कनी आ, तो मतलब मां रिलैक्स थी करे प्रोग्राम के, बाकी जदी रश हुंदी आ ना अल्लाह लास्ट में मां सफा तक जी पंदी आया। सो लास्ट टाइम जे को मां पाण के फ्रेश फील कयां थी, सो चवंदा न मतलब मुंहिंजी अमी उहो मिसाल ॾींदी आहे, थोरा कणा थाली में भला, सो समझो था। अब्दुल्ला महर भाई ये गाना आपको रेडी किया जाता है।

अच्छा गानो ॾाढो भलो हलायो अथव, मां गाने सां गॾोगॾु तव्हां खां इजाज़त वठां, टाइम बि थी चुको आहे, सो मोकिल वठंदासीं इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात जेका आहे त मुंहिंजी सुभाणे थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे बाबा प्रोग्राम में, सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा कयो, किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त हुन जे लाइ माज़रत, ऐं तव्हांखे चवंदी वेंदा त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजे या वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजे तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं पोइ मूंखे ॿुधाइजो त तव्हांखे कीअं लॻा, हुन सां गॾोगॾु मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अला हाफ़िज़ बाय आई लव यू ऑल।

0: नूरो
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
0: GFM 91.6
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

ईरान सां मुआदे जे वेझो आयो हुन थो चाहियां त मुआदे खे ख़राब कयो वञे। नेतन्याहू वटि बि ईरान सां डील क़बूल खां सवाइ बि को बि गस न आहे। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त ईरानी हमलनि अमरीका जी गलनि वारी ख़्वाहिश खे तब्दील नाहे कयो। तेहरान खे चवां थो तव्हां मिज़ाइल फायर करे छॾिया, हाणे बस कयो, ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि अचो। ईरान सां मुआदो न थियो त कमांडर ऑपरेशन ते गौर कयो वेंदो। मीडिया रिपोर्ट मूजिब ट्रम्प नेतन्याहू खे इसराइल जे वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे। अमरीका ऐं ईरान में अमकानी मुआदे ते अॼु सुभाणे सयूं थियण जो इम्कान आहे। नेतन्याहू ट्रम्प खे ईरान ते हमला न कराइण जी ख़ातिरी बि कई आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जा इसराइल सां गॾपन बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे हमनसबनि सां रफ़्ता। अब्बास इराक़ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। ईरानी परडेही वज़ीर सऊदी, तुर्किया, कतर ऐं फ़रांस जे बि हमनसबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पेठल मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं।

0: होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स, सीएनजी स्टेशन, शादी हॉल, मुख्तलिफ इकसाम
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी88 नेटवर्क सिंध की आप

0: के हो तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क।
1: हाण डंदन जी बीमारियुनि में मुब्तला मरीज बिल्कुल परेशान न थियनि। मीरपुर खास शहर में डॉक्टर दोहा राजड़ एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक ते लेडी डॉक्टर डॉक्टर दोहा राजड़ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन BDS लम्स जाम शोरू RDS MSC डिप इन इम्प्लांटोलॉजी UK सर्टिफाइड एस्थेटिशियन लेक्चरर मोहम्मद डेंटल कॉलेज इब्न सीना यूनिवर्सिटी मीरपुर खास। मुख्तलिफ़ डंदन जी बीमारियुनि यानी डंदन जो सूर, डंद किरण, डंदन जी फीलिंग, अकुल डाठ कढ़ण, जबड़े जो सूर, मसनूई डंद लगाइण, कढ़ण, लाहिण ऐं चाढ़ण, डेंटल इम्प्लांट, बटीह डंद लगाइण, टेड़ा मेड़ा डंद सिधा करण, डंदन जी सफाई ऐं पॉलिशिंग, बायोप्सी जी सोजी, डंदन जे हर किस्म जा टांका खोलण ऐं लगाइण ऐं डंदन मां रत जींदो आहे। नोट, लेडीज़ जे लाइ ख़ासि पर्दे जो इंतज़ाम थियल आहे, त अव्हां वटि अचो 8 वॻे ताईं टाउन मीरपुर।
0: खूबसूरती हर दिन हर जिंदगी की 88 सिंध।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: traveled all the way to Wisconsin for the purchase.
1: अमरीकी सदर ट्रंप चूंडन में दादगी वाले सवाल जो जवाब देने पर साफ ते कावड़ी पे हो इंटरव्यू दौरान माइक जमीन के उछले हलो पो मुख्तलिफ चैनल जब नाला खड़ी तनकीद ट्रंप मीडिया के कूड़ो करार डींदे चूंड में दादगी थी हुई।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: मोहम्मद उमरान जी डिप्लोमाजी कोर्सेज लाइ दाखिलाऊं जारी आहिन लेबोरेटरी टेक्नीशियन ओटी टेक्नीशियन मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन क्रिटिकल केयर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर दाखिला फीस 5000 महवार फीस 4000 रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलिएट एड्रेस मोहम्मद उमर बुग्यो इंस्टीट्यूट साइन डिस्ट्रिक्ट जेल डिफेंस सिटी मीरपुर खास वधिक मालूमात लाइ 0300-288-237-0333-721-4436
1: अखियुनि जे सभ खां वॾे इदारे जा मशहूर ऐं तजुर्बेकार सीनियर फेको सर्जन डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ कुरैशी ऐं सर्जन डॉक्टर इसरार अखियुनि जी ॿियुनि बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहिनि। टाइम रोज़ाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं, शाम 6 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं। आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं ऑपरेशन कया वेंदा। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान लेज़र अखियुनि जी अस्पताल, सर सैयद रोड गरीबाबाद मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 0303-261700।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधजी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: लई सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: time to commercial break.
1: Nipur Khas Shahar mein Dr. Doha Rajad Aesthetic and Dental Clinic te Lady Doctor Dr. Doha Rajad Consultant Dental Surgeon BDS Lumps Jam Shoro RDS, MSc, Dip in Implantology, UK, Certified Aesthetician, Lecturer, Mohammed Dental College, Ibn Sina University, Mirpur Khas. Mukhtalif dandan ji bimarin, yani dandan jo sur, dand kiran, dandan ji feeling, akul dat kadhan, jabde jo sur, masnui dand lagain, kadhan, lahin ai chadhan, dental implant, batti dand lagain, teda meda dand sidhakan, dandan ji safai ai polishing, biopsy, masudan ji soji, दंदन जे हर किस्म जा टांका खोलण ऐं लगाइण ऐं दंदन मां रत जो वहण जो इलाज कयो वेंदो आहे नोट लेडीज जे लाइ खास पर्दे जो इंतजाम थियल आहे त अवां बि लेडी डॉक्टर दोहा राजड़ वटि अचो ऐं पंहिंजे दंदन जो इलाज करायो टाइम सुबुह जो 11 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं एड्रेस फर्स्ट फ्लोर लम्स लेबोरेटरी जे मथां न्यू टाउन मीरपुर खास राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0305-29-71-767-0313-841-344
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ वी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: टेंशन छोड़ो, सुनो GFM 88 मोरो, मोरो की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATM एंड कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुझे ट्रंप ने तंजाव के साइड से वधिक हमलन का रोक छो है। अमेरिका ईरान में इम्कानी माहिरे से अज रहूं थे जो इम्कान है। नेतन्याहू ट्रंप के ईरान से हमला न करने की खातरी भी कराई है।

ईरानी वडी वजीर अब्बास राखी जा इसराइल से झड़पन बाद मुख्तलिफ मुल्क के हम मनसबन से राबता। अब्बास राखी फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर से भी गाल बोल कई। ईरानी वडी वजीर सऊदी तुर्किया कतर ए फ्रांस से भी हम मनसबन के फोन कयो। इसराइल से पैदा थियल मौजूदा सूरत हाल से गाल कई। गिलगित बल्तिस्तान चूंडन में पीपी मैदान मारे वरतो। जालन जो जशन 24 सीटन में 18 सीटन जा नतीजा अची व्या। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजन मूजिब पीपल्स पार्टी 9 सीटन ते कामयाब। 3 सीटन ते नवाज लीग, 1 ते वहदतुल मुस्लिमीन ए 6 सीटन ते आजाद उम्मीदवार कामयाब थे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कामयाबी ते जालन के मुबारकूं। बिलावल भुट्टो जरदारी जीबी में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां जीबी जी चूंडन में कामयाबी ते पीपल्स पार्टी के वाधायूं। शहबाज़ शरीफ चयो त सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे कामयाबी ते वाधायूं।

0: लिया तो नून लीग की टीम भी इलेक्शन में भरपूर मेहनत कई।
1: More evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: about your elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and the press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. Right. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You have straightened out your press because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for the interview.
0: अमेरिका के ट्रंप चूंडन में धांधली बारे सवाल जो जवाब देने बदरा साफ फीते कावड़ी पियो। इंटरव्यू दौरान माइक जमीन से उछली हलियो हुआ मुख्तलिफ चैनल सा नाला खड़ी तनकीद। ट्रंप मीडिया के कूड़ आडी ने चो चूंडन में धांधली थी हुई। सेनेट की प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी जो चेयरपर्सन कुरतुल्लैन वरी की सदारत हेठ इजलास। सक्कर हैदराबाद मोटरवे कम शुरू न थियण ते मेंबर्स जो सख्त एहतजाज। सक्कर हैदराबाद मोटरवे वारे मनसूबे कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म वाडो रखने की हिदायत। कमेटी मेंबर्स जाम सैफुल्ला दारे जो सैफुल्ला अबड़ो सिंध सा रोड से मामले ते ज्यादती थी रही है। बिन वजीर आजम के इफ्तताह बावजूद सक्कर हैदराबाद मोटरवे पेश किया मामलो वजीर आजम आडो रखो वे। आजाद कश्मीर के बेन जिलों की कुहाला में भी अवाम एहतजाजी सड के रद्द कर छो। आजाद कश्मीर के बेन जिलों कुहाला में भी जिंदगी मामूल जिया जारी। आजाद कश्मीर में कुहाला पुल ते ट्रैफिक की रवानी मामूल मूजिब जारी। कुहाला पुल ट्रैफिक लाय मुकम्मल बहाल। कुहाला में सबई नंढियों वड्यों बाजारों व्यापारी मर्कज भी खुलियल। मदेजी के गोठ दड़ो में घर अणबणता औरत कतल। मुसमात सायरा कंदर के खुटा डेई कतल करण जो इंकशाफ। लाश अस्पताल मुंतकिल। औरत के वारिसन मूजिब भियाणी के संदस मुड़स अताउल्ला कंदर तशरुत कंदो हो। औरत के मुड़स घुटा ए जहर डेई मारो है। जवाबदार के गिरफ्तार कयो वे। नवाबशाह के बिजी मंडी भरसा वाटर कोर्स मां नामालूम शख्स जो लाश हथ। इतला ते पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कर सुणप न दी। पुलिस मूजिब लाश कें दरवेश जो लगी रो है। गंबट ए भरपासे में पकड़ियल एचआईवी ते जाब्तो न आयो। एचआईवी जा वधिक चार शकी वार गेम्स दाखिल। नींगर मोहम्मद यूसुफ 12 महीना जी नूर फातिमा 6 महीनन जी होरेन 10 महीनन जो आर्यान में एचआईवी जो बच्चो। इंतजामिया मूजिब बारन जो पीसीआर रिपोर्टू मोकलियो आइन। रिजल्ट इन वक्त ताई नाहे आयो। रिजल्ट अचण ताई तस्दीक नथा करे दूं। एचआईवी जा शकी मरीज साम्हूं अचण सबब को फरी सूरतयाल पैदा थियल। कादिरपुर ए भरपासे में उड़ी ते जाब्तो न आयो। बबार फोत। गोठ मोर सुंदराणी में नींगर ए नींगरी उड़ी वेगे फोतिया। इलाके वासियन पारा डॉक्टर मोकलण जो मुतालबो। हैदराबाद पुलिस पारा मुबैन मुकाबले में बिन डोहारियन के मरण की दावा। पुलिस मौजूद मुबैन मुकाबले में मारजी वेलन की सुणप मोर खान सुमरो ए अब्दुल रशीद जोड़े जो जिन नालन साथी आए। मारजी वेल बई डोहारी एमएनए नवीद कमर के सोट के घर मां चोरी में भी मुलविस हुआ। वधीक जांच जारी। मेहरान पुल वट मोटरसाइकिल से सवार बिन जणन के रोकण जो इशारो कयो तो उन्हें पुलिस से फायरिंग करनी। गोटकी वेझो मुंबई इनाइश्तमाही लजारुट जो शिकार। नारी अदालत में 164 जो बयान रिकॉर्ड कर छो। पुलिस केस में नामजद जवाबदार समी चाचर एमी चाचर के भी अदालत में पेश कयो। अदालत में बयान रिकॉर्ड करण का पोए केटीएन न्यूज से गालाइंदे नारी चयो तो मुश्ताक निस्तार जमीर ए अमीर चाचर मूसा जिन्सी लड़ाई कई। पुलिस मुख्य जवाबदार मुश्ताक चाचर ए निस्तार चाचर के अं गिरफ्तार नाहे कयो। समूरन जवाबदार की गिरफ्तार कर इंसाफ कयो वे। कराची में कुकेन क्वीन अनमोल उर्फिन के खिलाफ गार्डन थाने से दाखिल बिन केसन की बुधनी। जांच ऑफिसर चालान पेश न कर सको। अदालत का बीहर मोहलत तलब। अदालत जांच ऑफिसर के मोहलत दींदे ईंदड़ बुधनी से चालान पेश करने का हुक्म दिनो।

0: थोड़ी स्पिन किए हैं। व्यंग जवाबदारन के वीडियो लिंक ये भी पेश न करो।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज। GFM 88 Network सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: न जंगी मासरियो नई सिफातकारिता हथ खयो आहे। इत्तेहाद ऐं ॾहप सां ईरान कामयाबी माणींदो। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान जो बयान। वॾे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तानी सालिस ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो अमल जारी आहे। 24 कलाकनि दौरान जेको कुझ थियो आहे ज़िमेवार अमरीका आहे। अमरीकी सदर जे रोकण बावजूद इसराइल जा ईरान में मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला। जवाब में ईरानी फ़ौज बि इसराइल ते मिसाइल जी बरसाति करे छॾी। इसराइली हमलनि सबबि तेहरान, इस्फ़हान, तबरेज़ ऐं ॿियनि शहरनि खे नुक़सान पहुतो। ईरानी फ़ौज जा बि ज़िमेदारा बनगोरियन अॾे ते बि एमरजेंसी लागू कई वई। इसराइली फ़ौज चयो आहे त ईरान जी दिफ़ाई ताक़त खे निशानो बणायो आहे। पासर इनकलाब चयो आहे त इसराइल जी नवातियम बेस ऐं तल नोफ ते हमला कया आहिनि। हमला ईरान में इसराइल पारां रेडार बेसिस खे निशानो बणाइण बाद कया विया। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी जा इसराइल सां झड़पनि बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे हम मनसबनि सां राब्ता। अब्बास इराक़ी फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। ईरानी परडे॒ही वज़ीर सऊदी, तुर्किया, कतर ऐं फ्रांस जे बि हम मनसबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पैदा थियल मौजूदा सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं। गिलगित बल्तिस्तान चूंडनि में पीपी मैदान मारे वरितो। जयालनि जो जशन। 24 सीटनि मां 18 सीटनि जा नतीजा अची विया। गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिब पीपल्स पार्टी 9 सीटनि ते कामयाब। 4 सीटनि ते नवाज़ लीग, 1 ते वहदतुल मुस्लिमीन ऐं 6 सीटनि ते आज़ाद उमीदवार कामयाब थिया। बिलाल भुट्टो ज़रदारी जूं कामयाबी ते जयालनि खे मुबारकूं। बिलाल भुट्टो ज़रदारी चयो त जीबी पीपल्स पार्टी खे वाधायूं। शहबाज शरीफ चयो त सदर आसिफ ज़रदारी ऐं बिलाल भुट्टो ज़रदारी खे कामयाबी खे वाधायूं ॾियां थो। नून लीग जी टीम बि इलेक्शन में भरपूर महिनत कई।
1: than ever presented.
2: Let's talk about
1: your elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. Right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest press.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for the interview.
0: अमरीकी सदर ट्रंप चूंडनि में धांधली वारे सवाल जो जवाब ॾियण बदिरां साफ़ी ते कावड़ चुको। इंटरव्यू दौरान ज़मीन ते उछले हली वियो। मुख़्तलिफ़ चैनल जा नाला खणी तनक़ीद। ट्रंप मीडिया खे कूड़ो करार ॾींदे चयो त चूंडनि में धांधली थी हुई। सेनेट जी प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी जी चेयरपर्सन कुरतुलेन मरी जी सदारत हेठि इजलास। सखर ते क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में वज़ीर आज़म आर्डर रखण जी हिदायत। कमेटी मेंबर्स जाम सैफुला धारे जो, सैफुला अबड़ो ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त सिंध सां रोड जे मामले ते ज़्यादती थी रही आहे। ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे सतह बावजूद सखर हैदराबाद मोटरवे रिथा ते शुरू रोड नाहे थियो। मार्च में कम शुरू करण

जो वादो कयो वियो पर टे महीना गुज़री विया आहिनि, कम शुरू नाहे कयो वियो। मामलो वज़ीर आज़म आॾो रखियो वञे। आज़ाद कश्मीर जे ॿियनि ज़िलनि जीअं कुहाला में बि उहा एहतजाजी सॾु खे रद्द करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर जे ॿियनि ज़िलनि जीअं कुहाला में बि ज़िंदगी मामूल जीअं जारी। आज़ाद कश्मीर में कुहाला पुल ते ट्रैफिक जी रवानी मामूल मूजिब जारी। कुहाला पुल ट्रैफिक लाइ मुकमल बहाल। कुहाला में सभई नंढियूं वॾियूं बाज़ारूं ऐं वापारी मर्कज़ बि खुलियलु।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तेरी रहमान है नवीद कमर भी शरीक नए वाले साल जी बजट ते गालूं वजह आजम पारा बजट ते पीपल्स पार्टी जा खर्चा खत्म करने की कोशिश है सरियन मुजिब हुकूमत ए पीपल्स पार्टी में बजट के अक्सर नुकतन ते इत्तफाक थी वियो है बजट पेश करने की भी तारीख तब्दील घंटे हो ते वियो वने ईरान इसराइल जो एक बे से हमला रोकण जो ऐलान ईरान इसराइल की फौज हमला रोकण की तस्दीक कर छी पासारन इनकलाब है बैरूत से हमलन जो भरपूर जवाब दिनों वो इसराइली अहदेदार मुजिब सदर ट्रंप की दरख्वास्त ईरान से हमला रोकया लदान में हिजबुल्ला खिलाफ कार्रवाई जारी रहंद अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप बिन्हीं मुल्क का हमला रोकण जो मुतालबो कन्दे हो ईरान से माहदे के वेझो आयो माहदे के खराब न कर वे पीरपुर खास में जमीनी तकरार तां पुलिस अहलकार कतल गुलशन हैदर फेज फन वाले इलाके में मोटरसाइकिल सवार हथियार बंदन पुलिस अहलकार खालिद वरी के गोलियों हणी कतल कयो मकतूल के पाव शहबाज बुधायो जमीन की तकरार तां ताबिश सूमर गुलशेर आली और हसन संदस भाव के कतल किया है जवाबदार गिरफ्तार किया वे पिथोरो वेझो घोट गुलाम रसूल आयसर में ब मासूम भाड़ियों वाटर कोर्स में बुनी फोत पंज साल शांति सत वरियन की माधुरी ओड बुनी फोत थी

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
1: वाह, ग्रिप सर्विस जैसी तो।
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा पी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती अम्मी, मैं मनोज उनकी जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मुझको थोड़ी सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा मियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा पी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: किया है सेंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वीरपुर कास्ट में जमीनी तकरार था, पुलिस एहलकार कतल। गुलशन एदर पेस बनवार इलाके में मोटरसाइकिल सवार हथियार बंधन पुलिस एहलकार खालिद मरी के गोलू हणी कतल कयो। मकतूल के भाव शहबाज बुधायो था जमीन की तकरार था ताबिश सूमर गुलशेर आली ए हसन संदस भाव के कतल कयो है। जवाबदार की गिरफ्तार कयो वने। पिथौर वेझो गोठ गुलाम रसूल आरिसर में बमासूम बणियूं वाटर कोर्स में बुढ़ी फोत थी वयूं। 5 साल की शांति ए 7 वरियन की माधुरी ओड बुढ़ी फोत थी।

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो ले।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है संजी दिल जी मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network.
3: GFM 88 Network.
2: सिंध की आवाज.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

समूरियूं धुरियूं साफ़ जो मुज़ाहिरो कनि। हथ में मक़सदु हासिल करण ते वेठो आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त विच ओभर ऐं तशदुद में वाधि अमन वारे मक़सद में देर जो करण थी सघे थी। तकरार जे हल लाइ भाइरनि ऐं भाई भाइरनि सां ॻाल्हियूं हथनी मर में आहिनि। छिकताण खां पासो कयो वञे। ईरानी पड़ेही वज़ीर अब्बास राख़्ची जा इसराइल सां झड़पनि बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे हमनसबनि सां राब्ता। अब्बास राख़्ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। ईरानी पड़ेही वज़ीर सऊदी, तुर्किया, कतर ऐं फ्रांस जे बि हमनसबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पैदा थियल मौजूदा सूरतयाल ते ॻाल्हियूं कयूं।

0: सेनेट जी प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी चेयरपर्सन पुरतुलेन वरी जी सदारत हेठ इजलास सखर हैदराबाद मोटरवे ते कम शुरू न थियण ते मेंबर जो सख्त एहतियात सखर हैदराबाद मोटरवे वरे मनसूबे ते कौमी इक्तसादी काउंसिल जे इजलास में वज़ीर आज़म आडो रखण जी हिदायत कमेटी मेंबर जाम सैफुल्ला धारे जो सैफुल्ला अबड़ो ऐं बेन एहतजाज कंदे चयो त सिंध सां रोड जे मामले ते ज्यादती थी रही आहे बिन वज़ीर आज़म जे इफ़्तिताह बावजूद सखर हैदराबाद मोटरवे रिथा ते शुरू कम नाहे थियो मार्च में कम शुरू करण जो वायदो कयो वियो पर टे महीना गुज़री विया आहिनि कम शुरू नाहे कयो मामलो वज़ीर आज़म आडो रखियो वेंदो माशी वायर केसर बंगाली सिंध बलूचिस्तान के मुल्क जा पुठते पियल सूबा करार डेई छॾियो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे केसर बंगाली चयो त टिन हुकूमतनि जो हिसो आहियां ख़बर आहे त मुल्क में छा थी रहियो आहे सिंध में बलूचिस्तान में तालीम लाइ बजट त रखी वञे थी पर ख़र्च नथी थिए सिंध में कराची खां सवाइ ॿियो को माशी मर्कज़ नाहे लाटाणे में बि 1970 खां पोइ तरक़ी नाहे थी सिंध जा 20 ऐं बलूचिस्तान जा 14 शहर माशी मर्कज़ थी सघंदा मुल्क में खंड जो कारोबार भी अवाम लाइ आफ़त आहे
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे रखी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: के बजट जो सुली तौर हिमायत करण जी खातरी कराए छी इख्लाफी नुक्तन ते फैसलो बिन्ही पार्टियन चू कमेटी कंदू बजा तो शहबाज शरीफ के वफद सा गड सदर आसिफ अली सरदारी बिलाल भुट्टो सरदारी से मुलाकात शहबाज शरीफ तरीकाती बजट समेत मुख्तलिफ मामले ते बिन्ही अखबारन के एतमाद में वरतो सरियन मुजिब मुलाकात दौरान आजाद कश्मीर की सूरतहाल ते भी गौर कयो वियो वज़ाहत शहबाज शरीफ जी भी चूंडन में पीपल्स पार्टी क्यादत के बारकूरी चयो तो बिलावल भुट्टो सरदारी असाजी भेट में सुठी मुहिम हलाई सदर सरदारी वराड़ो आखिर पुट कैंजो है।

वफ़ाक़ी बजट में जे पेश थियण में वधीक ॿ ॾींहं लॻण जो इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो अॼु रिथियल इजलास मुल्तवी करे छॾियो। सुभाणे इजलास थियण जा इम्कान। तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। 10 तारीख़ ते इक़्तिसादी सर्वे जारी थियण जो इम्कान। 11 या 12 जून ते बजट पेश करते हुआ।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिन्हीं मुल्क का हमला रोकने जो मुतालबो कदे ईरान से मुआदे के वेझो आयु मुआदे के खराब न कर वन।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे।